की जलिय रोथन सगे सगे सगे सगे दिन से नू ये कपूर सुई कपूर सुई कपूर सुई गम्य इलाफ न ले जे निंते लपले क्रम